0: जी हाँ दोस्तों, दुआ है।
1: সত্যি কথা বলি, এখন তো গরম পড়ে গেছে আর হাজার হাজার টাকার ইলেকট্রিক বিলও আসা শুরু হয়ে গেছে। গিন্নি তো কবে থেকেই বলছে সোলার প্যানেল লাগানোর কথা, বলছে সরকার সাবসিডিও দিচ্ছে। আমি যাকেই জিজ্ঞেস করছি সবাই বলছে জিরো বিল আসতে শুরু করেছে। ভাবছি এবার লাগিয়েই নিই। বিদ্যুৎ যখন বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে তখন লাগাচ্ছেন না কেন? আপনিও লাগিয়ে নিন পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা। যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in।
2: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, दुआ करते करते आपकी दोस्त सविता पहुँची है स्टूडियो 107 एफएम रेनबो में और आप सभी का करती है स्वागत। इस्तकबाल, सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, संडे की सुबह है और मस्ती में होंगे आप और हम भी हैं, रिलैक्सेशन के मूड में। कोई जल्दी नहीं है, आपसे करेंगे हम ढेर सारी बातें। और आज तो है एक खास दिन। कौन सा है खास दिन बताऊंगी, पहले सुनवाऊंगी कृष्णा कॉटेज का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, सभ्यता, संस्कृति, आविष्कार, खोज, जन्म, मृत्यु, युद्ध, शांति, तथ्य, दस्तावेज, घटना, प्रतिघटनाएं, यही तो पहचान है इतिहास की। इतिहास को जानते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें, सबक सीखते रहें, यही मौजूदा वक्त की पुकार है, तभी तो मानव सभ्यता होगी बेहतर। तो दोस्तों, ऐसे इतिहास को आइए साझा करते हैं आपके साथ। 2 अगस्त के दिन वो कौन सी घटनाएं थी जो देश दुनिया की इतिहास में हो गई दर्ज। 2 अगस्त का दिन कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। ईसा पूर्व 216 में इसी दिन कैने का युद्ध हुआ था, जहां हैनिबल की कार्थेजियन सेना ने विशाल रोमन सेना पर एक बड़ी विजय प्राप्त की। ईसा पूर्व 338 में चेरोनिया के युद्ध के परिणाम स्वरूप फिलिप द्वितीय के नेतृत्व में ग्रीस में मैसेडोनियाई शासन का उदय हुआ। 1776 में 2 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पर औपचारिक हस्ताक्षर किए गए, जो अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसके अतिरिक्त 1858 यानी 1858 में इसी दिन भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था, जिसने भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया, जिससे भारतीय शासन में एक नए युग की शुरुआत हुई। इसकी प्रत्येक घटना ने विश्व पर अमिट प्रभाव छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने की आपके साथ साझा। आज के दिन कुछ खास व्यक्तियों ने जन्म लिया, इनके बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे गीत। और गीत सुनवाने से पहले आज हम आपको करना चाहते हैं, देना चाहते हैं शुभकामनाएं, क्योंकि आप हैं हमारे दोस्त। बिल्कुल दोस्तों, आज है मित्रता दिवस। 2 अगस्त पहले रविवार को भारत में मनाया जाता है मित्रता दिवस। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा, और कभी भी उदास तो बिल्कुल नहीं होना। जब सविता आपके साथ है तो फिर गम की क्या बात है। चलिए पहले गीत सुनेंगे, उसके बाद हम आज दोस्ती की ही बातें करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फोन लाइन पर दोस्त की बात बताने के लिए। यार

के दिन। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन 2 अगस्त 1878 को पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। वे भारत के सच्चे देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक भी थे। पिंगली वेंकैया को संस्कृत, उर्दू और हिंदी जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इसके साथ ही उन्हें भू विज्ञान और कृषि का भी व्यापक ज्ञान था। 1904 में जब जापान ने रूस को हराया तो इस खबर से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत जापानी भाषा सीख ली। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस आंदोलन ने पिंगली वेंकैया के विचारों को भी प्रभावित किया। उस समय उन्होंने अमेरिका से कंबोडियन नामक कपास के बीज आयात किए और उन्हें भारत के कपास के बीजों के साथ अंकुरित करके भारतीय संकर कपास के बीज तैयार किए। अपने शोध कार्य के लिए वे बाद में वेंकैया कपास के नाम से प्रसिद्ध हुए। आंध्र प्रदेश में 2 अगस्त 1878 को जन्म हुआ था पिंगली वेंकैया का। दोस्तों आज के दिन भारत के एक प्रसिद्ध उद्यमी GPK बिरला समूह के संस्थापक GP बिरला स्वर्गीय ब्रजमोहन बिरला के पुत्र थे। गंगा प्रसाद बिरला का जन्म हुआ। GPK बिरला परिवार ने 4 महाद्वीपों में निर्माण और सेवा क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की हैं। इस श्रेणी में मोटर कार और घटक इंजीनियरिंग उत्पाद, विनिर्माण उत्पाद, औद्योगिक रसायन और कागज जैसे विनिर्माण कार्य शामिल हैं। गंगा प्रसाद बिरला GPK बिरला समूह के प्रमुख थे। GPK बिरला समूह की स्थापना उनके स्वर्गीय पिता ब्रजमोहन

बिरला ने की थी। यह समूह वाहन वियरिंग भारी मशीन विद्युत पारेषण उपकरण सीमेंट पंखे आईटी और उपभोक्ता वस्तु आदि के निर्माण में लगा हुआ है। तो दोस्तों हमने बात की आज कुछ उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया था।

0: दोस्तों एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है नॉनस्टॉप गपशप पर और मैं हूँ सविता। लेकर आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। जी हाँ, हम सभी नॉस्टैल्जिया हो जाएंगे। हमारे बचपन के दोस्त, हमारे जवानी के दोस्त, हमारे उम्र हो जाने पर वो दोस्त जिंदगी दोस्ती का ही नाम है। बिल्कुल दोस्तों, हम आज बात करेंगे दोस्ती की, क्योंकि आज है मित्रता दिवस और इस अवसर पर जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त। जी हाँ, मेरे दोस्त। हेलो।
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सविता जी।
0: गुड मॉर्निंग, आपका नाम बताइए।
2: मैं मोनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांकराइल हावड़ा से।
0: मोनिरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं सबसे पहले तो।
2: बहुत अच्छा है, और आपका प्रोग्राम सुनकर और भी अच्छा आ गया, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा गाना और इतना अच्छा टॉपिक लाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: जी जी, हम भी बहुत खुश हैं कि आज इस टॉपिक पर बात कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्त तो देखो सबके होते हैं, है ना।
2: सबसे पहले
0: जी
2: हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपको और सभी श्रोताओं को।
0: जी धन्यवाद।
2: और कोई फ्रेंड के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ, तू मिले तो लगता है सब मिल गया। हर खोया हुआ लम्हा फिर मिल गया।
0: बिल्कुल सही बात।
2: हर खोया हुआ लम्हा फिर मिल गया। दोस्ती का ये रिश्ता कितना हसीन है, जैसे खुदा का कोई गिफ्ट मिल गया।
0: बिल्कुल एकदम सच बात है, और जिसके दोस्त होते हैं वो बहुत लकी होता है।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू
0: जी। कुछ क्या, कोई आपके दोस्त को याद करना चाहते हैं?
2: हाँ, हमारे जो रेनबो का सभी कॉलर मेरा दोस्त है
0: जी,
2: और ये दोस्ती बरकरार रहे। आप हमारे और हमारे जो सभी श्रोताओं का दोस्ती का जो कनेक्शन है ये बरकरार रहे, यही मैं चाहता हूँ।
0: जी शुक्रिया मोनिरुद्दीन जी।
2: चलिए,
0: आपके नाम, आपके नाम एक गीत, और आपके नाम ही नहीं सारे दोस्तों के नाम।
2: थैंक यू मैम।

0: सलामत रहे दोस्ताना। हमारा बिल्कुल दोस्तों, हमारा और आपका दोस्ताना भी सलामत रहने वाला है। दुश्मनी होने की कोई बात ही नहीं है। कुछ बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी यदि किसी दोस्त के साथ थोड़ी सी खटपट हो गई है, थोड़ी सी कुछ शिकायत हो गई है, कुछ इकरार हो गया है, इनकार हो गया है, तो मना लीजिए ना, आज का दिन तो है ही इसीलिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो हम सुनेंगे उनके भी दोस्त के साथ उनकी खट्टी मीठी यादें। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं पारस पंडित चूजा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: पारस पंडित जी, आपको आपका स्वागत और आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार, और बताइए क्या कहना चाहते हैं दोस्ती पर?
1: आज तो फ्रेंडशिप डे है
0: जी,
1: तो फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए जो सुख में ही नहीं दुख में भी साथ दे, और किसी भी मुसीबत में साथ देना ही दोस्त का मूल लक्ष्य होना चाहिए। और मेरा परिवार में ही सबसे मेरा बड़ा दोस्त है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, और दोस्तों के साथ मैं समय बिताता हूँ। समय शाम के समय या चाय पीने के टाइम में भी मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, और सभी को सुख दुख में मैं साथ देता हूँ।
0: कोई ऐसी मजेदार किस्सा
1: लेकर ये दोस्ती ये गाना सुना दीजिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
0: कौन सा?
1: शोले का ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे।
0: ओ, शोले का मैंने सुबह चलाया था 7 बजे FM गोल्ड।
1: ओके ओके, तो आज ठीक ठीक है दीदी, तो आप एक दोस्ती पर कोई गाना सुना दीजिए।
0: एकदम दोस्तों, ये दोस्ती पर ही आज सुना रही हूँ मैं आपको। चलिए आपके
1: जी,
0: दोस्त।
1: धन्यवाद दीदी, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।
0: थैंक यू। तो हमारे साथ अभी पारस पंडित जी जुड़े थे और उन्होंने दोस्ती पर बात की, और दोस्तों पर वो गीत सुनना चाहते हैं। हम अभिजीत का की आवाज़ में दोस्ती पर गीत सुनवाएंगे, लेकिन बताएंगे आपको कि आपके जो पुराने दोस्त हैं उनको दोस्तों हमेशा सहेज कर रखिएगा, क्योंकि वो एक खजाने के रूप में है। हम कई बार उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो दोस्त कहीं पीछे छूट जाते हैं और शायद हम उन्हें ना चाहते हुए भी भुला देते हैं, लेकिन यदि चाहें तो उन्हें याद रख सकते हैं, बीच बीच में मिल सकते हैं, गेट टुगेदर

0: कर सकते हैं, फ़ोन पर हेलो हाय तो कर ही सकते हैं। चलिए हम दोस्ती पर बात करते करते कोलकाता कल्चर की ओर ले चलते हैं।
1: कोलकाता कल्चर।
0: जी हाँ, आज की हम बता दें कि कोलकाता में होने वाले कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक गतिविधियाँ लीजेंडरी गायिका उषा उत्थप के जीवन संगीत और कोलकाता के साथ उनके गहरे जुड़ाव का एक शानदार उत्सव हो रहा है। समय है 6 बजे नजरुल मंच सदर्न एवेन्यू में। इसके अलावा किशोर कुमार की जयंती के उपलक्ष्य में उनके सुनहरे गीतों और यादों को समर्पित एक विशाल सांस्कृतिक संध्या भी होने जा रही है शाम 5 बजे चितरंजन एवेन्यू में। इसके अलावा महिलाओं के नेतृत्व क्षमता, स्वास्थ्य, वित्त और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित विशेषज्ञ सत्र और नेटवर्किंग भी में भी लोग मिलने वाले हैं पार्क होटल में। तो ये थे आज की कुछ कोलकाता में होने वाली सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक हमारे दोस्त का फोन आ रहा है, थोड़ा उसको उठा लेते हैं।
2: हेलो
0: हेलो, हाँ आप बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो,
0: हाँ मैं सुन पा रही हूँ आपको, बोलिए।
2: हेलो,
0: आप बोलिए, आप ऑन एयर हैं, सुन पा रही हैं मुझे? शायद उनको समझ नहीं पा रही हैं वो, तो चलते हम एक गीत सुनते हैं।

0: सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, यदि हम मित्रता की बात करें तो मित्रता एक अनमोल रत्न है जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, सफल बनाता है। और मित्रता केवल हमारे संबंधों को ही नहीं बनाता बल्कि आत्मा की गहराई के साथ जुड़कर उसे एक अनुभव बनाता है। दोस्तों, यदि दोस्तों का साथ है तो मानसिक सहारा मिले हमें तो कठिनाइयाँ जितनी भी बड़ी से बड़ी आएँ हम उसमें सफल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने प्रियजन दूर होते हैं और आसपास हम किसी बेगाने शहर में होते हैं, लेकिन वहाँ हमारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनके कारण हमारे लिए उस नए शहर की, नई जगह की जितनी भी परेशानियाँ सब हल हो जाती हैं, सब आसान हो जाती हैं। हमारे साथ जुड़ी थी पायल, हमारे साथ जुड़ी थी सुप्रिया। पायल ने कहा कि जो भले ही हमारे पास ना हो लेकिन वो मुँह से भी इतना बोले कि मैं तेरे साथ हूँ तो हम उसमें मजबूत बन जाते हैं। एक बात बिल्कुल सही है ये। और सुप्रिया जी कहती है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त शिक्षक रहे क्योंकि बचपन से उन्होंने हमारा साथ निभाया, हमें आज इतना बड़ा इस मुकाम तक पहुंचाया। तो सुप्रिया जी का भी कहना बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा वो कहती हैं कि सबसे बड़ी दोस्त मैं हूँ, यानी सविता उनकी दोस्त है। तो सुप्रिया जी, मैं आप भी मेरी दोस्त हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मेरे सभी दोस्तों को मैं मित्रता दिवस की एक बार फिर से बधाई देती हूँ और कहती हूँ कि उनका जीवन बढ़िया सा निकले। वक्त बड़ी जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन सा गीत बजाऊँ और कौन सा नहीं। बिल्कुल 10:54 और 31:32 सेकंड हो चुके हैं। दोस्तों, मित्रता के बारे में और हम क्या कहें, इतना कुछ कहने के लिए था लेकिन कह नहीं पाए। आपके खट्टे मीठे सारे अनुभव हम सुनना चाहते थे दोस्ती के साथ। राम ने दोस्ती निभाई सुग्रीव के साथ और जी हाँ, जटायु को उन्होंने जो पक्षीराज जटायु हैं उनका अंतिम संस्कार करके उन्होंने दोस्ती निभाई। इसके अलावा रामायण में श्री राम का निषाद राज गोह के साथ मित्रता का सुंदर उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो जग जाहिर है। तो ऐसी ही दोस्ती आपकी बनी रहे, आप मस्त रहें और आपके दोस्त हमेशा आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलते रहें। और चलते चलते हम गीत सुनवाएंगे। हमसे सुप्रिया जी ने गुजारिश की कि हम ये गीत उनको सुनवाएं, तो चलिए ये गीत सुनवाते हैं। और 4 तारीख को मैं फिर से मिलने वाली हूँ और अभी 11:10 पर मिलेंगे हम। लो आ गई उनकी याद एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर 101 पर, तो मिलिएगा ज़रूर क्योंकि आज हम जतिन ललित की बात करने वाले हैं। तो दीजिए फिलहाल इजाज़त आपकी दोस्त सविता को और हैप्पी फ्रेंडशिप डे एक बार फिर से।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर आरजे अंकित आपके साथ और मैं हाजिर हूं कार्यक्रम लेके दिन का तड़का। दोपहर के 3:02 हो चुके हैं दोस्तों और अब 3:03 हो चुके हैं। जी हाँ, आपका दोस्त आरजे अंकित हाजिर है यहाँ पर, रहूंगा मैं 4 बजे तक आपके साथ और लेकर आया हूँ ढेर सारे धमाकेदार ट्रैक्स आप लोगों के लिए। ट्रैक्स के साथ साथ दोस्तों कुछ छोटी मोटी जानकारी भी मैं आपको देते रहूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, संडे का दिन है और आप सभी को सबसे पहले फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मालूम है आज आप सब एंजॉय कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन हमारा कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा क्योंकि इस फ्रेंडशिप डे में तड़का लगाने के लिए दिन का तड़का लेकर हाजिर है आपका दोस्त अंकित। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ।

फिल्म जब तक है जान से दोस्तों हर्षदीप कौर की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक ए आर रहमान का कंपोजिशन गुलजार के बोल। और दोस्तों येलो अलर्ट यानी पीली चेतावनी के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं दोस्तों और थोड़ी वार्निंग भी दे दूं कि हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और वो दोस्तों अलग अलग हिस्सों में चलने की संभावना अलग दो तीन घंटों के दौरान, जैसे कि नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही दोस्तों मालदा जिलों में कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा और दोस्तों पड़ेगा आपका प्रभाव पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिलों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों ये तो थी मौसम की बात, क्यों ना वापस से अब हमारे स्टूडियो का मौसम, हमारे कार्यक्रम का मौसम बदला जाए इस अगले ट्रैक के साथ।

दोस्तों सुन रहे थे फिल्म जोड़ी ब्रेकर से शफकत अमानत अली और क्लिंटन सिराज की आवाज में। ये ट्रैक सलीम सुलेमान ने सजाया था, संगीत से इरशाद काबिल ने सवारा था बोल से। 3:15 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है तीन का तड़का आपके अपने चैनल पर 107 FM रेनबो पर। आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम 107 FM रेनबो पर, लेकिन साथ साथ अपने एंड्रॉयड फोन पर भी आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप। करिए डाउनलोड और ट्यून करिए FM रेनबो और सुनिए हमारा ये कार्यक्रम।

फिल्म ब्लड मनी से दोस्तों आप मुस्तफा जाहिद की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक। जिद गांगुली ने सजाया था संगीत से, शहीद कादरी ने सवारा था बोल से। कमर्शियल गैस सिलेंडर 192 रुपए हो गया सस्ता। जी हाँ, होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में शनिवार से 192 रुपए की कटौती की गई है।

0: फिल्म विकी डोनर से विशाद अतलानी, सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे। बहुत ही प्यारा संगीत, डॉन एंड बैन का संगीत और अश्वनंद किरकिरे के थे बोल।
1: रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के लिए एक दीर्घकालिक बचत और पेंशन योजना है। इसे पीएफआरडीए द्वारा चलाया जाता है। ये योजना 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। योजना की अगर मुख्य बातों की बात करें तो इसकी पात्रता 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक एनआरआई और ओसीआई के अंतर है। न्यूनतम निवेश प्रतिवर्ष केवल 250 रुपये आपको निवेश करना होगा। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। बच्चे के 18 वर्ष के होने पर यह सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाता है। पढ़ाई या गंभीर बीमारी के लिए 3 साल बाद कुल राशि का 25% तक निकाल सकते हैं।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

फिल्म जन्नत टू से दोस्तों के की बेहतरीन आवाज में आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सैयद कादरी ने सजाया था बोल से, प्रीतम ने सवारा था संगीत से। हुगली जनगणना कार्य शुरू, 15 तक होगी स्वयं गणना। जी हाँ, जनगणना 2027 के स्वयं गणना सेल्फ एन्यूमरेशन चरण की शनिवार से औपचारिक शुरुआत हो गई। हुगली जिले में जिला प्रशासन और चंदन नगर निगम की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान का शुभारंभ किया गया।

इशक ज़ादे से दोस्तों श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक अमित त्रिवेदी का कंपोजिशन कौशार मुनीर की बोल। 3:44 PM हो चुका है आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है तीन का तड़का आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM।

0: रेनबो पर, और आप हमारे ये कार्यक्रम सिर्फ रेडियो से पर ही नहीं अपने फोन पर भी सुन सकते हैं। सिर्फ आपको करना होगा एक ऐप डाउनलोड, न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप, ट्यून करिए वहां पर एफएम रेनबो और एंजॉय करिए हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम। आकाशवाणी के चैनल से रहने वाला हूं 4 बजे तक आपके साथ इस कार्यक्रम में।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

फिल्म तेरी मेरी कहानी से दोस्तों शान और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक साजिद वाजिद का कंपोजिशन और प्रशून जोशी के बोल। और जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं आज है फ्रेंडशिप डे, यारों का दिन, दोस्ती का दिन। चलिए सुन लेते हैं कि यार वाला ट्रैक आप लोगों के लिए।

0: फिल्म कॉकटेल से दोस्तों सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन और इरशाद कामिल के थे बोल।
1: गाने जो लगा

0: एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। अब हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के एक आखिरी ट्रैक की तरफ। आपने दोस्तों इस गाने को बांग्ला में तो सुना है, लेकिन अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस गाने को, इस गीत को हिंदी में। और इसी गीत को सुनते सुनते दोस्तों आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा FM रेनबो पर शाम को 7 बजे के बाद। और अगला कार्यक्रम होगा इस ट्रैक के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझसे फिर से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ FM गोल्ड पर भी जुड़ सकते हैं 5:15 पर।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: আর যেহেতু প্রচুর ছবি টবি শেয়ার করি, সেই কারণের জন্য সবাই জেনে গেছে যে আমার এই দু কামরার ফ্ল্যাটের এক চিলতে, না না অনেকটা বেশি বলে ফেললাম আর কি, আধ চিলতে জায়গায় আমি তৈরি করেছি আমার নিজস্ব ছাদ বাগান, যাকে সবাই মিলে তোমরা বলো টেরেস গার্ডেনিং।
4: হ্যাঁ, মানে এই ছাদ বাগানের এই ছাদে কিন্তু তোমার ট্র্যাক্টর চালাতে হবে না, লাঙলও দিতে হবে না, তবে সেখানে কিন্তু তুমি এই অমরজিতের মতোই বেশ একটু ধনে পাতা বা একটু পুদিনা, মানে অমরজিত যখন একটু ফ্রাই ট্রাই রান্না করে এই ছাদ বাগান থেকে একটু ধনে পাতা নিয়ে নেয়, পুদিনা নিয়ে চাটনি বানিয়ে ফেলে।
3: আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, লেভেল অফ হিংসা বলে একটা কথা আছে। হ্যাঁ, মানে কি লেভেলের হিংসা মানুষজন করতে পারে, যখন শীতকালে সুন্দর করে

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: বাহ বাহ বাহ, বড় সুন্দর করে কিন্তু সাজিয়েছেন ভদ্রলোক। টেরেস গার্ডেনিং বলতে যা বোঝায় একদম তার আদর্শ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার তৈরি করে ফেলেছো নিজেকে। যাই হোক না কেন, সুরে যেতাম মোটামুটি যখন বারান্দার উদ্দুর হিট হয়ে গেছে, দেবারদি তখন অনেক ছোট।
7: এইভাবে এইভাবে জনসমক্ষে আমার বয়স নিয়ে কথা বলাটা ঠিক ঠিক হচ্ছে
6: জন এবং সমক্ষে? বা বা বা, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, অনেক সময় অনেক ছুতো তো আমরা পাই। জাগে জাগে জাগে জাগে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ও ওভাবে তাকানোর কিছু হয়নি, প্লিজ প্লিজ প্লিজ দেবারদি, ওইভাবে তাকানোর কিছু হয়নি। বাবা অমরজিৎ, কেটে পড়ো বাবা।

गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों 107 FM रेनबो पर आरजे अंकिता के साथ। और शाम के बज चुके हैं 7:31 PM और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके यादों की बारात आपकी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारा कार्यक्रम है 9 बजे तक, लेकिन मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ 7:45 तक। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों अंकित, क्योंकि दोस्तों 7:45 पर आप सुनेंगे एक

विशेष कार्यक्रम, लेकिन लेकिन लेकिन 8:02 से फिर जब आप लौटेंगे हमारे इस कार्यक्रम में तो आपके साथ जुड़ेंगी शर्मिष्ठा जी। हाँ, तो चलो दोस्तों, मैं रहता हूं आप लोगों के साथ 7:45 तक, और रविवार की इस खूबसूरत शाम में आपका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर महीने अपने साथ कुछ नई यादें लेकर आता है, लेकिन अगस्त का महीना बॉलीवुड के लिए हमेशा से खास रहा है। इस महीने कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने हमें हंसाया, भावुक किया, रोमांचित किया, और ऐसे गीत दिए जो आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। आज की इस महफिल में हम याद करेंगे अगस्त के 19 सुनहरे पड़ाव को, जहां हर फिल्म अपने साथ एक कहानी लेकर आई और हर गीत एक खूबसूरत एहसास बन गया। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जुलाई के आखिरी शुक्रवार को रिलीज हुई है फिल्म अगस्त के पहले वीकेंड में हर किसी की जुबान पर थी। करण जौहर की वापसी, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की शानदार केमिस्ट्री और रिश्ते को नए अंदाज में पेश करने वाली कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से दोस्तों अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। दोस्तों अगस्त का महीना आते ही सिनेमा घरों का माहौल बदल जाता है। छुट्टियां, त्योहार और बड़ी फिल्मों का इंतजार, यही वजह है कि इस महीने रिलीज हुई कई फिल्म इतिहास बन जाती है। अब याद करते हैं 2014 की बड़ी रिलीज। 15 अगस्त 2014 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अजय देवगन एक बार फिर बाजीराव सिंघम बनकर बड़े पर्दे पर लौटे। फिल्म ने रिलीज के साथ ही शानदार शुरुआत की और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। सुनिए इस फिल्म का खूबसूरत रोमांटिक गीत।

फिल्म सिंघम रिटर्न से दोस्तों अंकित तिवारी तुलसी कुमार की आवाज सुन रहे थे कि अंकित तिवारी का संगीत संदीप नाथ आशेंद्र कुमार उपाध्याय के थे बोल दोस्तों। अब बढ़ेंगे कुछ फिल्में एक्शन से प्रभावित करती है, कुछ अपनी कहानी से और कुछ अपने संगीत से हमेशा के लिए याद रह जाती है। अब बारी एक ऐसी फिल्म की जिसने खेल और देशभक्ति दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर उतारा। मैं बात करूं 1948 की ओलंपिक भारत के पहली हॉकी स्वर्ण पदक की प्रेरणा से बनी गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2018 को और इस फिल्म ने दर्शकों को एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी से रूबरू कराया। लेकिन इस फिल्म का एक और खूबसूरत पहलू था इसका संगीत और खासकर ये गीत। आइए दोस्तों सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों इसी के साथ हमारा कार्यक्रम होता है समाप्त। अब बढ़ेंगे एक विशेष कार्यक्रम की ओर। मुझे दीजिए इजाजत और 8:02 से आपके साथ जुड़ेंगी शर्मिष्ठा।
1: We bring you a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: As regards to grievance redressal and institutional mechanism is concerned, so we have four codes, and this industrial relations code is the one of the important code. Why this is one of the important code? Because it maintains peace and harmony. Whenever any strike will both way affect, it will affect the worker as well as it will affect the economy. So this industrial code is one of the important code, try to resolve all the grievances which are coming to this in the form of industrial dispute. So industrial dispute covers maximum aspects, the disputes between employer and employer, disputes between employer and employee, disputes between worker and worker, disputes between trade unions as well. So this particular aspect has been taken care of in the industrial relations code. Industrial relations code, the first mechanism which have been given the statutory backing, it is the recognition of negotiating union and negotiating council. Everywhere you will find the trade unions, everywhere you will find disputes, and there are some differences between the trade unions, workers, as well as with the employer. So now this recognition will give you the platform where they can, bargain on the workers' interest with the employer. So this platform will give you transparency, and in negotiating union, the election will be held by the employer, and then only the negotiating union will be recognized. So that is also one the democratic way. And negotiating councils, where some it happens that you will not get the 51%, because the criteria for negotiating union is 51%. So sometimes it happens you will not get 51%. So then another concept has also devised. What negotiating council means? If you have get 20%, then you will have a one member in the council as well. So likewise, we can have 5 members in that particular council. So by involving all trade unions in that particular industry, so that all demands of the workers can be put forth before the employer. So this is one of the important reforms which the government has done. First question comes into the mind of the worker that, okay, I got so many provisions in the various courts, where I will go? If some dispute is there, if some problem is there, then where I will go? So in this particular code, we have provisioned the grievance redressal committee, and it is mandatory if you have if you are employing more than 20 workers, 20 or more than 20 workers, then you have to constitute this grievance redressal committee. And this grievance redressal committee itself have representatives from the employers as well as representatives from the workers. So it is a body which will provide you the immediate redressal of your grievance, so that it should not, it should not convert into a big dispute. So this is first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, trade unions या कोई भी miscreant व्यक्ति उसको misguide कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क्स कमेटी भी बनाई जाएगी, और उस वर्क्स कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो एड्रेस करें। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी। और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है। और वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी, सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा। अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास। अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे। अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट। अब कौंसिलर्स ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्कर के चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है और वो सीधे जा सकता है। कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिटेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है। सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट

0: करते हैं। ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाएगी।
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member ट्राइब्यूनल। पहले केवल 1-member ट्राइब्यूनल था, अब हमने बना दिया है 2-member ट्राइब्यूनल, और जिसके अंदर एक जुडिशियल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर 2-member ट्राइब्यूनल है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशियल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट्स या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज़ को सुने। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट हैं, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई

0: नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से, तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है। अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीजें बताई, एसआई और पीएफ और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है, इसको कवर किया गया है इसमें। सो आपका 80% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा। इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, ईपीएफओ और ईएसआईसी को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीज़ें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। सो इसमें भी दो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेचुटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है, और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये ओएसएच कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है, बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्ड्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है, जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

आठ बजकर नौ मिनट है, स्टूडियो ईगढ़ के समय 107 एफएम रेनबो पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा कौर, लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी रेडियो दोस्त छायालोक। और रविवार की शाम है तो लेकर आते हैं हम आपके लिए छायालोक के अंतर्गत बहुत ही खास, यानी कि यादों की बारात को लेकर बातें होती हैं इसी कार्यक्रम में। और पुराने फिल्मी गीत हों या फिर नए ट्रेंडिंग फिल्म, लेकिन चाहे जो भी हो, फिल्मों को लेकर गपशप, फिल्मों के गीतों को लेकर गपशप चलती रहती है इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शर्मिष्ठा, करती है बहुत ज़्यादा स्वागत आप सभी श्रोताओं का। और अब तक तो बहुत सी बातें हो ही चुकी होंगी नए नए फिल्मों को लेकर, लेकिन इस वक्त कर लेते हैं कुछ पुराने फिल्मी गीतों को लेकर भी बात। इसके अलावा कुछ ऐसे गीतों को लेकर भी बात करेंगे जो कि आजकल थोड़े से अनसुने हो गए हैं, या फिर उन गीतों को लिखने वाले जो गीतकार हैं उनके बारे में ख़ास तौर पर बात हम नहीं करते। तो चलिए, जो भी हो, बातें होती रहेंगी बहुत सारी, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगी आज के खास दिन को लेकर, यानी कि बताऊं आपको कि आज का दिन आखिर डेडिकेटेड है किसके नाम और किस नाम से मनाया जाता है आज के इस दिन को। तो नेशनल फ्रेंडशिप डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, यानी कि दोस्ती निभाई जाती है राष्ट्रीय तौर पर और दोस्तों के नाम डेडिकेटेड होता है आज का ये दिन। और भारत में फ्रेंडशिप डे यानी कि मित्रता दिवस हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है, जो कि आज 2 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है। और वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया गया था, लेकिन भारत सहित कई देशों में अगस्त के पहले रविवार को ही दोस्ती के बीच जश्न, दोस्तों के बीच जश्न मनाने की जो परंपरा है वो चलती आ रही है। और इस दिन को मनाने के पीछे की अगर इतिहास को लेकर हम बात करें तो फ्रेंडशिप डे मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 1935 में अमेरिका में हुई थी। इसके अलावा साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया था, और ये इसलिए किया गया था ताकि विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच शांति और भाईचारा बनाया जा सके। और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य तो यही है भाई, फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है।

है तो दोस्ती को निभाने के अलावा भला उद्देश्य और क्या हो सकता है, है ना। इसीलिए इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन में दोस्ती के महत्व को समझना, इसके अलावा उसके प्रति आभार, दोस्तों के प्रति आभार प्रकट करने का भी उद्देश्य बताया जाता है। और उपहारों की मैं क्या ही बात करूं, अब दोस्ती मनाई जा रही है, फ्रेंडशिप को निभाया जा रहा है, तो बिना दोस्तों के और बिना गिफ्टशिप के भला दोस्ती कैसे मनाई जाए, है ना। तो दोस्तों के साथ अपना जो भाईचारा है, अपनी जो दोस्ती है, उसे मनाने के लिए भाई गिफ्ट तो देना लेना बनता है। इसके अलावा घूमने फिरने की बात करूं, ये भला कैसे मैं चूक सकती हूँ, क्योंकि जो दोस्ती के नाम दिन डेडिकेटेड है, इसी दिन तो ख़ास कर दोस्तों के साथ मिलकर घूमना फिरना बनता ही है। इसके अलावा ये जो घूमने फिरने का जो सिलसिला होता है, इसमें ना बाहर घूमने जाने से जो पुरानी यादें हमारी होती हैं वो फिर एक बार ताज़ा हो जाती हैं, और इस दिन के ज़रिए पुराने दोस्तों से फिर एक बार मिलना जुलना हो जाता है, और वही पुरानी वाली जो दोस्ती हमने निभाई थी, खैर हमेशा उन पुराने दोस्तों से मिलना जुलना तो नहीं होता है, लेकिन एक खास मकसद को ध्यान में रखते हुए उन्हीं पुराने दिनों की याद फिर से हम याद को याद कर सकते हैं, और कुछ पल के लिए ही सही फिर से पुरानी यादों को ताज़ा किया जाता है। और इसके अलावा अगर बॉलीवुड में फिल्मों की बात करें जिसमें दोस्तों की दोस्ती को निभाया गया था, इसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक गीत हो जाए, है ना, उसके बाद बात करेंगे आज के खास दिन को लेकर। और फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

8:08 स्टूडियो घड़ी का समय और छायलोक के अंतर्गत यादों की बारात में बात हो रही है आपकी रेडी दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और फिलहाल बात कर रही थी दोस्ती के दिन को लेकर, यानी कि नेशनल फ्रेंडशिप डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। तो दोस्ती जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाए या फिर अपनों के बीच मनाई जाए, आखिर बात तो है दोस्ती की, है ना। और दोस्तों के संग जब फ्रेंडशिप डे पर मिला जाता है तब आमतौर पर हम ग्रीटिंग कार्ड एक दूसरे को देते हैं, जिससे अपने दिल की बात, अपने दोस्ती की बात हम बड़े ही आसान तरीके से अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं। और अगर खाने पीने की चीज़ों को, लेन देन की बात अगर करें तो मीठे का इस्तेमाल ही हम ज़्यादातर करते हैं, जिसमें चॉकलेट का इस्तेमाल आमतौर पर होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके किसी दोस्त या फिर सहेली को मीठा खाना पसंद नहीं है, है ना। कोई उल्टी सीधी बात तो मैंने नहीं की, क्योंकि ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके बहुत से दोस्तों में किसी एक दोस्त को मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद ना हो। उसे चाहिए थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा तीखा और ऐसी चीज़ जिससे मुँह में पानी आ जाए। तो फिलहाल आपके दोस्त या फिर सहेली के मुँह में पानी आ रहा होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे इस बात को करते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। लेकिन अपने मुंह के पानी को कंट्रोल करते हुए इस बात को मैं कहने जा रही हूं कि हाँ, ये तो हो ही सकता है ना कि आपके दोस्त या फिर सहेली को मीठा खाना पसंद नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, क्या आप उसके बाद भी जबरदस्ती फ्रेंडशिप डे को मनाने के लिए, भाई मीठे का चलन तो जरूरी है, इसीलिए आप फिर एक बार वही वाला पुराना ट्रेंड दोहराते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप फिर भी क्या चॉकलेट ही अपने दोस्त को या फिर सहेली को देते हैं, क्योंकि वह फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है और ऐसे में तो किसी भी खास दिन को मनाने के लिए मीठे का चलन चला हुआ है, चलता है और चलना चाहिए, और मीठे से ही हर बंधन मजबूत होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या आप भी अपने दोस्त या फिर सहेली को ज़बरदस्ती मीठा खिलाते हैं तो, और फिर भी अगर उसे नहीं पसंद है तो खैर, आपका दोस्त या फिर सहेली उस चीज़ को ले तो लेता है, चॉकलेट को ले तो लेता है, लेकिन सोचता है भाई इस मीठे के अलावा अगर कोई और चीज़ लाई होती, या फिर कोई और नमकीन, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ दिया होता तो शायद मेरे दिल को और ज़्यादा खुशी मिलती, है ना। तो चलिए, ये तो बात हुई खाने पीने की, लेकिन उससे पहले मैं बात कर रही थी बॉलीवुड में बनने वाले कुछ खास फिल्मों को लेकर, जिसमें दोस्त की दोस्ती को लेकर बात की जाती है। तो बॉलीवुड में दोस्ती के विषय पर सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें से कई दर्जनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट साबित हुई हैं। हिंदी सिनेमा में दोस्ती को हमेशा एक बेहद ही पवित्र और मजबूत रिश्ते के रूप में दिखाया गया है। तो अगर सदाबहार और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले बात करना जरूरी है उस फिल्म के बारे में जो कि रिलीज हुई थी साल 1975 में, यानी कि फिल्म का नाम है शोले। और जय और वीरू की दोस्ती के बारे में भला कौन कैसे भूल सकता है ना। और अगर आप नहीं भूले हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, और मुझे पता है कि जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त उनमें से बहुत सारे लोग जय और वीरू की दोस्ती को तो बिल्कुल भी नहीं भूले थे, और इसीलिए ये जो दोस्ती है, इन दोनों की दोस्ती है, इसका गाया जो गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आज भी दोस्ती का नेशनल एंथम माना जाता है। तो इसके अलावा साल 2009 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था 3 इडियट्स, और उसमें भी दोस्तों की पक्की दोस्ती को दिखाया गया था, जिसमें रैंचो राजू और फरहान की तिगड़ी दोस्ती हमें आज भी याद है ना। इसके अलावा दिल चाहता है जो कि बनी थी साल 2001 में, इसके अलावा साल 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी दोस्तों की दोस्ती को हमें देखने को मिला था। इसके अलावा शाहरुख खान काजोल की दोस्ती को भला हम कैसे भूल सकते हैं, और इस दोस्ती को हमने देखा था साल

1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है में। तो ये जो दोस्तों की दोस्ती वाली जो फिल्म है ये बॉलीवुड की दुनिया में एक खास जगह रखती है। तो फिलहाल रुक करेंगे एक फिल्मी गीत की ओर और उसके बाद मैं बात करूंगी पुरानी शानदार हिट फिल्मों के बारे में जिसमें दोबारा दोस्तों की दोस्ती पर बेस्ड करके फिल्म को बनाया गया था। तो एक प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उन पुराने फिल्मों को लेकर जिसमें कॉन्सेप्ट था दोस्त की दोस्ती को लेकर। तो 1964 में फिल्म बनी थी दोस्ती, उसके बाद 1981 में हम सब जानते हैं कि दोस्ती पर बेस्ड करके एक फिल्म को बनाया गया था याराना, जिसमें अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती को दिखाया गया था। इसके अलावा 1971 की फिल्म तो आपको याद ही होगी, जी हाँ, जिसका नाम था आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की दोस्ती को हमने देखा था इस फिल्म में। और

अगर नए फिल्मी फिल्मों की अगर बात करें, फिर एक बार कॉन्सेप्ट वही दोस्तों की दोस्ती। तो 2013 में फिल्म बनी थी ये जवानी है दीवानी। इसके अलावा छिछोरे, जिसे हमने देखा था साल 2019 में। इसके अलावा 2003 में हमने देखा था मुन्ना भाई MBBS, जी हाँ। इसके अलावा रंग दे बसंती 2006 में, और उसके बाद साल दिलों में एक अलग छाप छोड़कर रखी है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में दोस्तों की दोस्ती को लेकर एक पवित्र रिश्ता माना गया था, और इस रिश्ते को कायम रखा गया है इस बॉलीवुड की दुनिया में, जी हाँ। और दोस्तों की दोस्ती को लेकर बहुत सी फिल्में बनी थी और लगभग सारी जो फिल्में हैं वो हिट रही। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाऊँ आपको एक प्यारा सा गीत। जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही थी खाने पीने की चीज़ों को एक्सचेंज करने के मामले में, अगर आपका दोस्त या फिर सहेली मीठी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करते हैं और चाहते हैं, मन ही मन चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि खुलकर हम कुछ कह नहीं पाते, हमेशा ये संभव नहीं होता है कि आप अपने दोस्त के सामने अपने दिल का इजहार करें कि भाई मीठा तुम मत लाया करो, बल्कि कुछ ऐसा लाया करो जिसमें कुछ खट्टा हो, कुछ मीठा हो, साथ ही साथ कुछ तीखे का स्वाद ही हो, और एक ऐसी चीज़ खाने पीने की एक ऐसी चीज़ हो जिसे देखकर ही हमारे मुंह में पानी आ जाए। तो ये कहना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने दोस्त की चाहत को समझते हैं कि मीठे के अलावा उसे कोई और चीज़ भी पसंद है जिसमें नमकीन शामिल किया जा सकता है, तो ज़रूर उस चीज़ को समझें और अगली बार दोस्त को इस तरह की चीज़ को तोहफे के तौर पर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल कितनी कोशिश आपकी रहेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्यारा सा गीत मैं आपके लिए प्ले कर ही सकती हूँ, है ना। तो चलिए सुनवाऊँ आपको एक प्यारा सा गीत जिसमें तीखा मीठा नमकीन हर फ्लेवर को आप महसूस कर सकते हैं। तो फिलहाल शान और साथियों की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: आठ बजकर 35 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय, संगे आप शर्मिष्ठा की ओर सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत यादों की बारात। और रविवार की शाम है तो बातें होती हैं कुछ नई तो कुछ पुरानी फिल्मों को देखकर, फिल्मों के गीतों को लेकर भी कई सारे गपशप की जाती है इसी कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त बात करूँगी एक ऐसे गीतकार को लेकर जिनके गीतों ने आज भी लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई हुई है। जी हाँ, जिन्होंने लिखे अनगिनत गाने, उस दौर में लिखे हुए गाने आज भी हम उन्हें सुनते हैं, प्यार उतना ही मिलता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो गीतकार हैं, ये जो लिरिसिस्ट हैं, उन्हें दूसरे गीतकारों से कुछ कम ही आंका जाता है। बात कर रही हूँ लिरिसिस्ट रानी मलिक को लेकर। जब लोग 90 के दशक के मशहूर बॉलीवुड रोमांटिक गानों के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर कुमार शानू, अलका याग्निक के अलावा नदीम श्रवण जैसे नाम याद आते हैं। लेकिन उन सदाबहार धुनों में से कई के पीछे एक ऐसी गीतकार थी जिनका नाम शायद ही कभी सुर्खियों में आया, वो नाम है रानी मलिक। ऐसे गाने लिखने के बावजूद जिन्हें दशकों बाद भी पसंद किया जाता है। रानी मलिक हिंदी सिनेमा की सबसे कम आंकी गई आवाज़ों में से एक बनी हुई हैं। उनके बोलों ने रोमांस और दिल टूटने के दौर को परिभाषित करने में मदद की। फिर भी कई संगीत प्रेमी इस बात से आज भी शायद अनजान है कि वे ही इन यादगार गानों के पीछे की महिला थी। जी हाँ, एक ऐसी गीतकार जिन्होंने कुछ ऐसे गाने लिखे जो कि आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बनी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि 90 के दशक के गाने बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, आज भी जिन्हें उस दौर के गाने पसंद आते हैं। लेकिन उसके बावजूद, पसंद तो गाने आते हैं लेकिन उसके बावजूद गीत को लिखने वाली जो गीतकार हैं उनके बारे में चर्चा जो है दूसरे गीतकारों की तुलना में थोड़ी कम ही होती है। तो चलिए, जब बात हो रही है रानी मलिक को लेकर, तो सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की।

लिया गया था इस गाने को और रिलीज हुई थी फिल्म 1990 में। अब तक के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गानों में से एक कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल का ये क्लासिक गाना 90 के दशक के प्यार की पहचान बन चुका था। इसके अलावा एक और गाना मैं आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाने वाली हूं जो कि रिलीज हुई थी फिल्म 1993 में। जी हाँ, फिल्म का नाम बाजीगर। प्रसिद्ध गाने का जो बोल है वो है, छुपाना भी नहीं आता। साल 1993 की सुपरहिट फिल्म बाजीगर का ये गाना है और इसे विनोद राठौड़ ने गाया है। संगीत अनु मलिक ने दिया और बोल रानी मलिक ने लिखे थे। इस गाने में शाहरुख खान और काजोल नजर आई थी और फिर एक बार एक सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट गाना आप सभी सुनने वालों के लिए। कार्यक्रम चल रहा है छायालोक के अंतर्गत, यादों की बारात।

चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि मेन स्ट्रीम से कुछ अलग रही, यानी कि जिनकी कहानी थोड़ी सी अलग थी लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड की दुनिया में कमाल करके छोड़ा इन फिल्मों ने। तो बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी सफलता के पीछे दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ छुपी हुई हैं। कम बजट में बनकर इतिहास रचने वाली या फिर असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत सफलता हासिल की थी। तो इनमें सबसे पहले बात की जा सकती है फिल्म आशिकी 2 को लेकर, जो कि रिलीज हुई थी साल 2013 में। महज 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सैड लव स्टोरी के जरिए लगभग 250 करोड़ की कमाई की थी। और अगर इस फिल्म के गीत संगीत की बात करें तो इसके गाने इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई थी। इसके अलावा साल 2001 में फिल्म बनी थी गदर एक प्रेम कथा। सनी देओल की इस फिल्म ने क्लैश के बावजूद सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया था। देश प्रेम और भावनाओं के मेल ने इसे जनता की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म बनाकर छोड़ा था। तो चलिए बात होगी और भी, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि गीत आप तक पहुंचाना है और गीत को सुनते और सुनवाते कार्यक्रम जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और चलिए समाप्त हो जाए उससे पहले सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ है श्रेया घोषाल की।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से तराने को, और इस गाने को सुनते सुनते हम चले जाएंगे इस कार्यक्रम के अगले और आखिरी ट्रैक की ओर, जो कि आवाज़ है आयुष्मान खुराना की। और इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिएगा इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिल रही हूँ बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर, तब तक के लिए ट्यून रहिएगा 107 FM रेनबो। सुन रहे थे छायलों के अंतर्गत यादों की बारात, चैनल 107 FM रेनबो।